0: सजूनी से भंगो प्रसाद जब आज सच जुगा सच है भी सच नानक होसी भी सच तन गुरु अमरदास निथाव्या दे थाओ
1: निथाव्या दे थाओ बाबा जी असी भी उन्होंने दर्शन करन आया किथे मिलेंगे
0: सचखंड विखे
1: सचखंड
0: हां बेटी गुरु अमरदास जी स्वर्गपुरी जाग राजे ने ता फिर साडे पागां च उन्होंने दर्शन नहीं निराश ना हो बेटे उन्होंने रूप गुरु रामदास जी तुंग पिंड नेड़े संतोख साहब की सेवा करा रहे ने
1: तुंग पिंड
0: हां धन गुरु अमरदास धन गुरु रामदास
1: धन गुरु अमरदास
2: धन गुरु रामदास
1: किन्नी सोहनी थां है तुसी दो घड़ियां आराम कर लो ते मैं किसी पिंडों जाके कुछ खान नू लैनी नाले पता कर लांगे तुंग पिंड किन्नी दूर है अच्छा
2: छेती आना धन गुरु रामदास।

0: हे परमात्मा, तुम्हारे पुकार सुन ले, माता के दरबार स्वीकृत सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म भारी, तन गुरु अमरदास,
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी
2: रस तो जाए सरोवर।

0: तू तान्य पुत्र ते तान्य तेरी भक्ति। नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
1: नानक भक्ता सदा विगास, सुने दुख पाप का नास।
2: बेटी,
1: पिताजी,
2: मैं क्षमा कर दे बेटी।
1: पिताजी, माँ,
2: पुत्र, बेटी, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ।
1: इतना न को पिताजी।
2: हाँ बेटी, मैं वैसा, तू सच ही ऐसी, जिस परमात्मा से तेरा विश्वास, वो सच में सर्वशक्तिमान है। उस दिन लीला परंपरा है।
0: राजा दूनीचंद?
2: नहीं संत जी, सिर्फ दूनीचंद को। मैं अपने अहंकार के कारण राजपाठ के लायक नहीं रहा, ते हूं मैं वही राह अपना ली है जेड़ी मेरी बेटी ने मैंने दसी है।
1: पिताजी,
2: बेटी, मैं इसे ले कह रहा सा तुसी घर जाओ।
1: नहीं पिताजी, जिथों मेरे पति ने नवा जीवन मिलिया सारे लिए वही थान सुलखनी है।
0: रजनी ठीक कहती है राजा दूनीचंद, ए सारी तीर्थ यात्रा के तपस्या का फल समुचे तौर पर ऐसे स्थान से मिलिया है। यह धरती बड़ी पावन है, एनू ऋषिया मुनिया का वरदान है। ए बेरी दुख पंजनी बेरी है, ते ए छकड़ी अमृत का कुंड है।
3: अमृत के इसे कुंड से गुलाम दास जी ने पौधा टक लगा के इस अमृत सरोवर का रूप दिता, जिथे अज लखा इंसान स्नान करके मन निर्मल और तन पंचम करते हैं। की हिंदू की मुसलमान की सिख की ईसाई, अमृत सरोवर के चौवां कूटा वाल खुले दर हर एक लिए सदा ही खुले रहते हैं।

बिन बाजे कैसो नृतकारी, बिन कंठे कैसे गावन हारी। जील बिना कैसे बजे रबाब, नाम बिना बिरथे सब काज। नाम बिना कहो को तरिया, बिन सदगुर कैसे पार परिया।

बिन विद्या कहाँ को पंडित, बिन अमरे कैसे राज मंडित। बिन बूझे कहाँ मन ठहराना, नाम बिना सब जग बौराना। बिन बैराग कहाँ बैरागी, बिन हो त्याग कहाँ को त्यागी। बिन बस पंच कहाँ

गोविंद ना भजे अहं बुद्ध माता जन्म जुए ज्यों हारे। नाम अमोला प्रीत नत स्यों पर निंदा हितकारे। छापर बांध सवारे तृण को द्वारे पावक जारे। कालर पोट उठावे मुंडे अमृत मन से डारे। ओढ़े वस्त्र काजर में

कोई पानी की सेवा पिया करता है, कोई तप्पड़ झाड़ के विछा रहा है, कोई संगतां दे ठहरन वास्ते बंदोबस्त पिया करता है, क्योंकि गुरु घर विच

हजूर कह ले क्यों भाई क्यों घबराया है की गल हुई। कहन लगा सचे पातशाह ए पता नहीं की खेड वरती है ते शहद विच कीड़े कित्थों आ गए ते बिल्कुल ताजा है। जदों के एक गल खास ध्यान देन वाली है कि शहद जेड़ा है एक ऐसा पदार्थ है जेड़ा शुद्ध होवे ओदे विच भावे जिन्ने चिर दा मर्जी रखिया होया होवे कीड़े नहीं पै सकते। पर ऐसे एक अजीब कौतक वरतिया एदियां नजरां ने एक वेखिया ओदे विच कीड़े ही कीड़े भरे पए। कहन लगा सचे पातशाह ते कीड़े कित्थों आ गए। हजूर मुस्कराए कहन लगे भाई तू ते कहंदा सी बड़ा निर्मल शहद है बड़ा स्वच्छ शहद है पर एदे तां कीड़े भरे पए ने। पसीना आ गया कंब गया चरण पकड़ ले सचे पातशाह इस खेड़ तो मैं अनजान हां ए किवें पाणा वरतिया। पातशाह बख्श लो। हजूर कहन लगे गुरमुखा जिस वेले मंगया सी उस वेले ते दिता कोई ना बड़े तरले पाए बड़े वास्ते पाए उस वेले ते दिता कोई ना हुण की लैण वास्ते आए। जे किते थोड़ा जा शायद ओथे दे दिंदा उस बुजुर्ग नूं तां मैनूं पहुंच जाणा सी ओ सेवा मेरी सी किसे लाचार दी सेवा किसे बेसहारे दी सेवा ओ मेरी सेवा है ओ गुरु की सेवा है। ए सेवा इस भावना नाल कीती जावे तां गुरु प्रवान करदा है क्योंकि गुरु सारी सृष्टि नाल प्यार करदा है गुरु हर एक जीव नाल प्यार करदा है ओ ते हर एक नूं जी दान दिंदा है। ऐसा है मेरा सतगुरु जो मनुख मात्र नूं प्रेरणा दे रहे ने भाई सेवा करके अपना जीवन सफल कर ले तेरा मन टिक जाएगा सुख मिलेगा शांति मिलेगी और यह लोक सुखिए परलोक सुहेले हो जाएंगे कह रहे।

तू बेअंत को बिरला जाने को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सबे, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा, अंत नहीं।

साहिब आज फतेह गोविंद सिंह शाहे शाहान फजले सच्चा साहिब अस्त ए लफज जेड़े लफज आप जी सरवण कर रहे हो ए लफज जेड़े सन सिख राज दे पहले सिक्के ते लिखे गए जदों सिख राज दा पहला सिक्का

जिस थान ते हर आदमी नू शरण मिलदी है, जिथे एक सुंदर नगर वसदा है, अते जिस दा शिंगार ए पागां वाला तखत है, उस थान ते ए सिक्का बनाया गया। भाव कि ए जड़ा सिख राज दा सिक्का गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह दी कृपा द्वारा मैं चालू कर रहे हां, इस राज विच सब बराबर ने, इत्थे सारिया नू सत्कार मान इज्जत मिलदी है, और ए सिक्का गुरु दी कृपा द्वारा सिख राज दा पहला

चालू नहीं होया एदे पिछे बड़ी कालना। आओ ए जानन वास्ते थोड़ा जा इतिहास नु देखिए कि किस तरह सिख राज दा ए पहला सिक्का बाबा बंदा सिंह बहादुर ने शुरू किया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दसवें गुरु जिन्हां महापुरखां दी आत्मक अवस्था इस शिखर ते सी कि ओ धर्म अते देश दी रखिया लई अपना सरबंस वार दें, जिन्हां अपने पिता गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिता हिंदू धर्म की रक्षा वास्ते, अपने बच्चियां नू कुर्बान कर दिता, अपने प्यारे साथियां नू वारी वारी मौत दे मुंह विच धकेल दिता, अपना धन दौलत संपत्ति सुख चैन जवानी सब कुछ इउं स्वाहा कर दिता जिवें कोई यज्ञ करन वाला किसे महान हवन कुंड विच आहुति ते आहुति देई जा रहा होवे। जिस दी महानता दा ए हाल सी कि ए सब कुछ कर दिया होया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने अपने मथे ते वट नहीं पाया, बुल्लां विचों हाय नहीं निकली, कदी अखां तों अथरू नहीं वगाए, कोई साधारण आदमी नहीं सन। उस साधारण आदमी भावे किन्ना भी देश भगत क्यों ना होवे निसंदेह अजिहा नहीं कर सकता जो गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने किया। अजय ही महा

जगह जगह होंदे हुए नादेड़ गोदावरी नदी दे किनारे वल जा पहुंचे। क्यों? गुरु साहब जी उस आदमी नू जेड़ा के वैराग दी नींद विच सुता पिया सी उस नू वैरागमय नींदर तू जगाउण आए ओ आदमी जी दा नां सी माधोदास। इस तू पहला कदी उसका नाम नारायण गिरी भी सी अते इस तू पहला उसके माता पिता उसनू लक्ष्मण देव कहंदे हुंदे सन। इस लक्ष्मण देव नारायण गिरी माधोदास बैरागी जेड़ा जंगल विच बैठा योग साधना करदा है इसनू वैरागमय नींदर तू जगाण वास्ते युग पुरुष धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नादेड़ वाल गोदावरी नदी के किनारे

माधुदास वैरागी। गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहण वाले जिदे आश्रम वाल गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जा रहे ने, इस बारे थोड़ा जिहा ज्ञान जरूरी है। लिखे है लक्ष्मण देव का जन्म जम्मू अते कश्मीर की एक रियासत राजौरी विखे होया। जम्मू कश्मीर की एक प्रसिद्ध रियासत जिदा प्रसिद्ध नगर राजौरी, जिथे लक्ष्मण देव का जन्म होया। इन्हां दे पिता एक मामूली जहे जागीरदार सन और एक दिन शिकार खेडदिआं लक्ष्मण देव ने एक तीर दे नाल एक हिरनी नूं मार सुटिआ, पर ओ हिरनी गर्भवती सी।

हिरनी जेड़ी सी मरी उदे पेट विच दो बच्चे सन जेड़े के तड़फ तड़फ के वो भी मर गए। इना छोटे छोटे बच्चियां दी मौत हिरनी दे नाल लक्ष्मण देव ने देखी उदे मन ते अजेहा असर होया कि उसने घर बार छड़ दिता। इस दुनिया तो उसका जी भर गया, पहला सन्यासी बनिया, उसका नाम नारायण गिरी पै गया, फिर बैरागी बनिया, योग सिख्या ले, फिर माधोदास बैरागी बन गया। कई जगह हुंदा होया, दक्षण महाराष्ट्र नादेड़ वाल तुर पिया, गोदावरी दे कंडे आश्रम बना के रहन लग पिया, अते अपना समा योग साधना विच बतान लग पिया। इस गोदावरी दे किनारे बहुत समा योग साधना करदया बीत गया। इत्थे ओ सारी दुनिया तो दूर, सारी दुनिया नाल रुस के घोर तपस्या विच जुट गया। इसे जगह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज आज अपने सिखा दे नाल घोड़ियां ते सवार होके पधारे हन। जिस वक्त माधोदास दे आश्रम पहुंचे ते माधोदास उस वेले अपने डेरे विच नहीं सी। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज माधोदास दे डेरे पहुंचे अते जाके माधोदास दे पलंग ते विराजमान हो गए। माधोदास दे चेलिया ने कहा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं कि ए साडे स्वामी दा पलंग है, आप जी इत्थे ना बैठो। पर गुरु साहिबां ने कहा असां जिथे बहना सी बह गए हां, क्योंकि गुरु दे कौतक गुरु जान दे। उधर चेले जंगल विच भजे गए, माधोदास बैरागी नूं जाके कहन लगे तुहाडे पलंग ते एक बड़ा तेजवान पुरश आके बैठ गया, लाओ लश्कर भी नाल है। उहदे चेहरे अगे किसे दीआं अखां नहीं हुंदीआं। तां माधोदास गुस्से विच आ गया, कहन लगा दिखावें पलंग पर बैठने का स्वाद कि जेड़ा मेरे पलंग ते बैठा है मैं उन्नू पलंग तो थले डेग देंगा और अपनी योग शक्ति दे नाल जंगल विच बैठे हां पलंग नू उल्टाण दी कोशिश की थी। पर माधोदास बैरागी पलंग नू उल्टा ना सकया। जद माधोदास बैरागी ने पूरा जोर लाया पलंग उल्टाण वास्ते, पलंग ना उल्टा सकया ता समझ गया कि मेरे पलंग ते जेड़ा बैठा है वो कोई मामूली इंसान नहीं। ते माधोदास बैरागी अपने आसन तो उठया और ए देखण वास्ते आश्रम वाल तुर पिया

आत्मा जाग पई सी, उस दे अंदर पवित्रता सी, सफाई सी, उचता सी। इस जागृत आत्मा ने गुरु महाराज जी नु वेखदे सार ही पहचान लिया। उस महापुरुख बारे भी इस माधोदास बैरागी ने सुनिया। वो महापुरुष गुरु तेग बहादुर साहब जिन्हां ने तिलक अते जंजू दी रखिया ले दिल्ली चांदनी चौक विखे अपना सिर दिता।

माधोदास बैरागी नू अमृत छकाया ते नाम बंदा सिंह बहादुर रखिया अते नाल इन्हां नू गुरबख्श सिंह भी किया जाता।

अनेकां वस्तुआं दे के बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जालमा दा नाश करन वास्ते नादेड़ तों गोदावरी दे कंडे तों पंजाब

माता सती ने उन्हां नूं कहा शंकर भगवान नूं, भगवान मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, उन्हां सारियां नूं बुलाया है पर ना मैनू बुलाया ना तुहानू बुलाया, परंतु वो मेरे पिता का घर है इसलिए मैं जाना चाहती हूं। शिवजी भगवान ने कहा बिना बुलाए जाना नहीं चाहिए, पर सती जी ना मने तो भगवान ने जाने की इजाजत दिती। सती जिस वक्त अपने पिता दशक प्रजापति दे महलां विच पहुंचे जिथे यज्ञ हो रहा सी, तां दशक प्रजापति ने सती नू कोई आदर ना दिता, सगा शंकर भगवान का भी अपमान किया। जदों इस गल का सती ने बुरा मनाया तां दशक ने अगू सगा होर कहा ओ नंग तड़ंग शिवजी भगवान, मैं ते कदी भी राजी नहीं सा उसनू अपना जवाई बना के। सती ए बर्दाश्त ना कर सके, उन्हां योग साधना दे नाल अपने शरीर विचों अग पैदा कीती, सड़ के भस्म हो गए। शिवजी भगवान नू पता लगा तां उन्हां ने उसे वक्त अपनी एक लिट पुट के सुटी, जिदे विचों भयंकर आवाज करदिया होया महाभैरों वीरभद्र वगैरा पैदा होए, ते जिन्हां ने आग्या मंगी तां भगवान ने कहा जाओ उन्हां दुष्टां दा नाश करो जिन्हां ने सती दा अनादर कीता। तां उसे वक्त उन्हां ने दशक प्रजापति दा सिर वढ के यज्ञ दी अग्नि विच सुट दिता, हर पासे खून दे फुहारे छुट पए, सारे लोग इउं नसन लग पए जिउं प्रचंड महातांडव नचदी होई परलव आ गई होवे। इसे तरह एक कथा शिव पुराण दी, शिवजी भगवान ने महाभैरों नूं अपने तेज विचों जिवें पैदा कीता अपने

जगह जगह जालमां नूं सजा दिंदा होया सरहंद दे लागे जा पहुंचिया। सरहंद जेड़ा कि पंजाब विच एक ऐसा शहर सी जिहदी तुलना किसे समय आगरे दे नाल लोक करया करदे सन। आगरे शहर तो भी वधिया जे कोई शहर है ता सरहंद है। जिस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर सरहंद दे कोल पहुंचिया अपनियां फौजां दे नाल और इस सरहंद वल बाबा बंदा सिंह बहादुर ने कहर दिया निगाह नाल देखिया, वो नजारा उन्हां दी अखां दे सामने आ गया। इस सरहंद विच वजीर खान ने गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे छोटे साहबजादे जिन्हां दी उम्र 8 साल तो भी थले, उन्हां जिउंदिआं नूं इत्थे नीहां विच चिण के शहीद कर दिता गया। वो नजारा अखां सामने आया, अखां गुस्से नाल लाल हो गईआं। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने अपने फौजियां नूं वंगारदिआं होया आखिआ, एहो ही वो सरहंद है जिस जगह मेरे गुरु दे नन्ने नन्ने मासूम बच्चियां नूं द्वार विच चुणिआ गया। बचाना इस शहर दा नाम निशान मिटा दिओ। वजीर खान ओदे अहलकार सब खत्म कर दिओ, नीहां विच साहबजादे चिणे गए। देखो कोई दीवार ना रहे, कोई मकान ना रहे, कोई किला ना रहे, कोई छत ना रहे, हल चला दिओ, इस शहर नूं मिट्टी च मिला दिओ। देखदिआं देखदिआं बाबा बंदा सिंह बहादुर दी फौज ने सरहंद ते हमला कर दिता। वजीर खान अपने वजीरां नाल अहलकारां नाल जरनैलां दे नाल लड़न वास्ते आया, पर बाबा बंदा सिंह बहादुर अगे कोई टिक ना सकिआ। देखदिआं देखदिआं शहर साड़ के सुआह कर दिता, किले ढा दिते, मकान ढा दिते, शहर नूं ढा ढेरी कर दिता। वजीर खान वो भी मारिया गया, उहदे वजीर अहलकार जरनैल सिपाही सब मारे गए। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने सरहंद ते फतेह कीती अते जिस वक्त सरहंद नूं फतेह कीता उहदी इट नाल इट वजा दिती और फिर फतेह दा डंका वजा के ए नहीं कहा कि मैं जितया। हाथ जोड़े ते कहन लगे, धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह आप दी कृपा द्वारा साहबजादियां दी शहीदी दा अज मैं बदला ले ले। और 7 साल जुल्म दे खिलाफ तबाही अते बर्बादी दा ए तूफान बाबा बंदा सिंह बहादुर ने उठाई रखिया। बाबा बंदा सिंह बहादुर बेशक आप ना रहा, पर तुरकां दी हकूमत नूं उसने मिट्टी विच मिला के रख दिता अते जदों फतेह कीती, तुरकां दी हकूमत खत्म कीती, तां उस वक्त बाबा बंदा सिंह बहादुर ने फिर सिख राज दा पहला सिक्का चलाया और उस ते अपना नाम नहीं गुरु दा नाम लिखाया। सिक्का जद हर दो आलम तेगे नानक साहिब अस्त, के ए सिक्का दो जहाना वास्ते है। गुरु नानक दी तलवार अते गुरु गोबिंद सिंह जी दी कृपा द्वारा